আকাশবাণী কলকাতা। আজ সোমবার, 15ই আষাঢ় 1948 শকাব্দ, 6ই জুলাই 2026।

0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা সমুদ্রে অথবা নদীতে মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে একটি সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে ঝোড়ো আবহাওয়ার কারণে আজ অর্থাৎ 6 জুলাই বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 45 থেকে 55 কিলোমিটার, কখনও কখনও 65 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং 7 জুলাই বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 35 থেকে 45 কিলোমিটার এবং কখনও কখনও সর্বোচ্চ 55 কিলোমিটার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা। মৎস্যজীবীদের আগামী 7 জুলাই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 5:59 হয়ে 41 সেকেন্ড। একটু পরেই সকাল 6টায় সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे।

0: पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, Prime Minister will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. Union Minister of Cooperation Amit Shah will attend the 5th Foundation Day ceremony of the Ministry of Cooperation in New Delhi today. The ministry said the ceremony will be held in line with the vision of Sahkar Se Samriddhi. On the occasion, Mr. Shah will lay the foundation stone and inaugurate several key initiatives. These include inauguration of 232 grain storage godowns, Bhumi Pujan of Sahkar Van, Bhumi Pujan of tissue culture facilities in Uttar Pradesh and Maharashtra, launch of National Cooperative Database NCD 3.0 and Geotag mobile application, launch of National Dairy Development Board's Milk Supply Review Dashboard Portal. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें ये कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाए। श्री राम को महाराज का ये संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बनाते हुए कहा, केतात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण

0: এরপরে শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রুয়ন্তাম প্রবাচিকা নিধিঃ ঝা। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां षड् दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमंत्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुभियान्तो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्तानगरे प्रधानमंत्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगलप्रसंगे श्रीशाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु द्वात्रिंशदधिकद्विशत अन्नसंग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनम्, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः टिशु कल्चर

0: इति सुविधायै भूमि पूजनम् राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रायां श्रद्धालूनां महत् सम्मर्धः दृश्यते, यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेषु एव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी।

सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र

0: बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालन ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anucha Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, the Prime Minister will reach Melbourne on the 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th of July. He will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland. The session is being organized by the United Nations Trade and Development from today to Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. We have a report.
2: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letter submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income and expenditure statement, balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
1: The nation pays homage to Bharatiya Janasangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture, in association with the West Bengal government, will organize a program in Kolkata tomorrow.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक

0: करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद

0: मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों की यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स

297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर दोस्तों, यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घड़ी बज चुके 9:10 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके रसधारा। दोस्तों जब भी हम रसधारा कार्यक्रम में आते हैं, एक विषय लाते हैं और बातें करते हैं उसी विषय पर, चर्चा करते हैं उसी विषय पर दोस्तों। तो आज का हमारा विषय है वन जंतुओं के आवास पर। जी हाँ दोस्तों, आज करेंगे हम पूरा कार्यक्रम इसी पर। वन्य जीव दुनिया भर के वनों में रहने वाले जानवर हैं। वन पेड़ों पौधों और जानवरों से भरे अद्भुत स्थान और वे कई प्रजातियों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। आकाश को छूने वाले ऊंचे पेड़ों से लेकर पत्तियों के नीचे छिपे छोटे जीवों तक वन बड़े छोटे विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है। वन्य जीव वन के अनूठे वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनमें विशेष विशेषताएं, व्यवहार या आदतें हो सकती है जो उन्हें वन में जीवित रहने में मदद करती है। कुछ जानवर निशाचर होते हैं, वे रात में सक्रिय होते हैं जबकि अन्य दिनचर होते हैं, दिन के दौरान सक्रिय। वह विभिन्न प्रकार के आवास प्रदान करते हैं जिनमें वन तेल, पेड़ों की छत्र और यहां तक कि पानी की धाराएं भी शामिल हैं जो वन से होकर गुजरती है। वन के प्रकार और उनमें रहने वाले जानवर वस दुनिया भर में पाए जाते हैं और वे विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन वनों में रहने वाले जानवर अक्सर वन की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। इसके कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों, तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के पास स्थित है जहां साल भर गर्म और बारिश होती है। ये वन अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं जिसका अर्थ है कि उनमें विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जानवर नम गर्म वातावरण और पेड़ों और पौधों की घनी परतों के अनुकूल हो गए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जानवर जैगवार एक बड़ी बिल्ली जो मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावन में रहती है। जैगवार उत्कृष्ट तैराक होते हैं और अक्सर पानी में पास शिकार करते हैं। और भी जानवरों के बारे में जानेंगे दोस्तों, लेकिन इस पहले गीत के बाद।

फिल्म प्रेम ग्रंथ से दोस्तों अलका याग्निक विनोद राठौड़ की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के बोल। दोस्तों बात कर रहे थे उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के जानवर के बारे में बात, तो अब बात करते हैं बंदर के बारे में। विभिन्न प्रकार के बंदर जैसे कि हाउलर बंदर और कैपुचिन बंदर वर्षावनों के पेड़ों में रहते हैं। स्लोथ के बारे में बात करें दोस्तों, स्लोथ धीमी गति से चलने वाले जानवर हैं जो अपना अधिकांश समय पेड़ों में उल्टा लटकते हुए बिताते हैं। ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। तोता चमकीले रंग के तोते जैसे कि मैका उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं और ध्वनियों की नकल करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

फिल्म मधुमती से मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने, बोल सफरा था शैलेंद्र ने। शीतोष्ण वन गुणों के बारे में बात करें दोस्तों तो हिरण, लेकिन पहले शीतोष्ण वन के बारे में आपको बता दूं कि होता क्या है। शीतोष्ण वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां मध्यम जलवायु होती है, जिसका अर्थ है वे सभी चार मौसमों का अनुभव करते हैं, वसंत ग्रीष्म शरद ऋतु शीतकाल। ये वन आमतौर पर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में स्थित होते हैं। शीतोष्ण वन में जानवरों को ठंडी सर्दियां सहित मौसमों में होने वाले परिवर्तनों से बचने की सक्षम होना चाहिए। शीतोष्ण वनों में जानवर अगर बात करें तो वो हिरण जैसे कि सफेद पूछ वाले हिरण शीतोष्ण वनों में आम है। ये शाकाहारी है और पौधे फल और पत्तियां खाते हैं। लोमड़ी चतुर जानवर है जो विभिन्न वातावरणों जिनमें शीतोष्ण वन भी शामिल है के अनुकूल हो सकते हैं। वे सर्वाहारी है और फल छोटे जानवर और पक्षी खाते हैं। गिलहरी की बात करें तो गिलहरियां आमतौर पर शीतोष्ण वनों में देखी जा सकती है, खासकर शरद ऋतु के दौरान जब वे सर्दियों की तैयारी के लिए नट्स इकट्ठा करती है। उल्लू की करें बात तो उल्लू निशाचर शिकारी पक्षी है जो शीतोष्ण वनों में रहते हैं। वे रात में शिकार करते हैं और छोटे जानवरों जैसे कि कृंतक खाते हैं।

फिल्म बूंद जो बन गए मोती से मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत सतीश भाटिया का संगीत भारत व्यास के बोल। दोस्तों 9:31 हो चुके हैं, अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है रसधारा आपके अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता पर दोस्तों। और आज रसधारा कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वन जंतुओं की आवाज के बारे में। रहूंगा इस कार्यक्रम में आपके साथ 10 तक और आप हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं 297.6 अर्थात 1008 मीडियम वेपर या फिर न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप पर भी। और अभी स्टूडियो की घड़ी वक्त हो चुका है 9:32। आइए दोस्तों बात करते हैं बोरियल वन यानी तेगा के बारे में। बोरियल वन जिन्हें तेगा के नाम से भी जाना जाता है ठंडे क्षेत्रों में स्थित है, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भागों में। ये वन ज्यादातर शंकुधारी पेड़ों में बने होते हैं जैसे कि पाइन और स्प्रूस। बोरियल वनों में रहने वाले जानवर ठंडी सर्दियों और छोटी गर्मियों के अनुकूल होते हैं। बोरियल वनों में जानवर जैसे कि मूस बड़े शाकाहारी जानवर है जो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के ठंडे वनों में रहते हैं। ये ठंड के अनुकूल है और कठोर सर्दियों में जीवित रह सकते हैं। भालू की बात करें तो भालू विशेष रूप से भूरा भालू और काला भालू बोरियल वनों में आम है। वे ठंडे महीने में जीवित रहने के लिए सर्दियों के दौरान हाइबरनेट करते हैं। लिंक्स की बात करें तो लिंक्स एक जंगली बिल्ली है जो ठंडी जलवायु में रहती है। इसके बड़े पंजे होते हैं जो इसे गहरी बर्फ में घूमने में मदद करते हैं। बर्फीला उल्लू की बात करें तो दोस्तों बर्फीला उल्लू एक सफेद शिकारी पक्षी है जो बोरियल वनों में पाया जाता है। ये बर्फीले वातावरण में मिल जाता है और लेमिंग जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं।

फिल्म रिफ्यूजी से दोस्तों सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। अनु मल्लिक ने सजाया था संगीत से, जावेद अख्तर ने सवारा था बोल से। दोस्तों एक जरूरी सूचना देनी है आप लोगों को, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है। आइए दोस्तों अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए कुछ विशिष्ट वन्य जीवों और उन्होंने अपने वातावरण के अनुकूल कैसे ढल लिया इस पर करीब से नजर डालें। लाल लोमड़ी की बात करें दोस्तों तो लाल लोमड़ी एक बहुत ही अनुकूलनीय वन्य जीव है जो विभिन्न प्रकार के वनों में पाई जा सकती है। इसकी एक झाड़ीदार पूंछ और लाल रंग का फर होता है जो इसे वन तल में मिल जाने में मदद करता है, खासकर शरद ऋतु में जब पत्तियों रंग बदल रही होती है। लाल लोमड़ी एक सर्वाहारी है जिसका अर्थ है कि ये पौधों और जानवर दोनों खाती है। ये खरगोशों और कृंतकों जैसे छोटे स्तनधारियों का शिकारी करती है, लेकिन ये फल जामुन और कीड़े भी खाती है। आवास लाल लोमड़ी शीतोष्ण वनों, वुडलैंड्स और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ये खोखले लॉन्ग बेल या पेड़ की जड़ों के नीचे डेन बनाती है। इसके अगर व्यवहार की बात करें तो लाल लोमड़ी रात के दौरान सक्रिय होती है, निशाचर और अपनी चतुराई और चपलता के लिए जानी जाती है। ये भोजन खोजने के लिए अपनी तीव्र गंध की भावना का उपयोग करती है।

फिल्म अंदाज से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन गीत शंकर जयकिशन ने सजाया था संगीत से, हसरत जयपुरी ने सवारा था बोल से। चलिए दोस्तों बात करें गिलहरी के बारे में। गिलहरियां सबसे आम वन्य जीवों में से एक है और आप उन्हें लगभग किसी भी प्रकार के वन में पा सकते हैं। उनके नुकीले पंजे और झाड़ीदार पूंछ होती है जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और संतुलन बनाने में मदद करती है। गिलहरियां शाकाहारी होती है और उनका आहार मुख्य रूप से नट्स, बीज और फलों से बना होता है। शरद ऋतु में वे सर्दियों के महान महीने के दौरान खाने के लिए बहुत इकट्ठा करती है, बलूत इकट्ठा करती है और उन्हें छिपी हुई जगहों पर जमा करती है। इसकी आवाज की बात करें तो गिलहरियां वनों के पेड़ों की चोटी पर रहती है जहां वे पत्तियां और टहनियां से घोंसले बनाती है। अगर इसकी व्यवहार की बात करें तो गिलहरियां दिन के दौरान बहुत सक्रिय होती है, दिनचर्या और अक्सर पेड़ों के ऊपर और नीचे दौड़ती हुई देखी जा सकती है। वे उत्कृष्ट जंपर और पर्वतारोही है। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे तेज और फुर्तीले होते हैं।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: फिल्म बीवी नंबर वन से दोस्तों कुमार शानू और हेमा सरदेसाई की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। संगीत से सजाया था अनु मल्लिक ने और बोल से सवारा था समीर ने। दोस्तों अब वक्त हो गया कि अब हम बढ़ चले हमारे कार्यक्रम के एक आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा सलमान खान और संजय दत्त की आवाज में फिल्म चल मेरे भाई का टाइटल गीत। और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित लेगा इजाजत थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा यहाँ पर संचयिता के स्टूडियो में ठीक 12 बजे कार्यक्रम सुर भी लेकर। और अगला कार्यक्रम होगा हमारे इस गीत के बाद आप लोगों के लिए थोड़ी देर में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बन्न मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरणों में सुधार किए जाएंगे। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड

भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मौसम विभाग ने आज गुजरात

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचार चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:16 और 17 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल संचयता पर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, और मैं हूं आपकी हरदिल अजीज तो शायस्ता नाज। आप सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। सामीन, सबसे पहले पेश है आईना, जिसमें आज आप समात फरमाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश पर गुफ्तगु। आज हम एक ऐसी शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी दानिश, क़यादत और अवामी खिदमत के जाने से हिंदुस्तान की सियासी और तालीमी तारीख में एक नुमाया मकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिनकी यौम पैदाइश हर साल 6 जुलाई को मनाई जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पैदाइश 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुई। वो एक मुमताज़ माहिर तालीम, कानून दान, मुफक्किर और सियासतदान थे। कम उम्री ही में उन्होंने इल्मी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की और बाद अज़ां यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे कम उम्र वाइस चांसलर बने। आज़ादी के बाद वो आज़ाद हिंदुस्तान की पहली मरकजी काबीना में सनत के वज़ीर रहे। बाद में नज़रियाती अख़लाक़ात के बाद उन्होंने वज़रात से इस्तीफ़ा दिया और 1951 में भारतीय जनसंघ की बुनियाद रखी, जिसने बाद की हिंदुस्तान सियासत पर गहरा असर डाला। डॉक्टर मुखर्जी कौमी यकजहती, मजबूत और मुतहद हिंदुस्तान और अवामी खिदमत के हामी थे। तालीम, दयानतदारी, कौमी जिम्मेदारी और अवामी फलाह की शख्सियत के नुमाया पहलू थे। 23 जून 1953 को उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी खिदमात और नज़रियात आज भी हिंदुस्तान की सियासी तारीख में अहमियत रखते हैं। आज हम उनकी यौम पैदाइश पर एक बार फिर खराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, अब पेश है ये नगमा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, ये नगमा। फिल्म का नाम था सागर, कलाम था जावेद अख्तर का और मौसिकी से सजा था आरटी बर्मन ने। दोस्तों अब पेश है मंजरनामा। मंजरनामा में कैसे मौजू पर गुफ्तगू करूंगी जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत से जुड़ा हुआ है, और वो है अपना घर। घर सिर्फ ईंट पत्थर और सीमेंट का नाम नहीं, बल्कि तहफ़्फ़ुज़, इज्जत, सुकून और बेहतर मुस्तकबिल की इलामत है। यही वजह है कि हुकूमतें मुख्तलिफ अदवार में ऐसे मंसूबे बना मुतारिफ कराती रही हैं जिनका मकसद गरीब और कमज़ोर तब और अकलियतों को रिहाइश फराहम करना है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंदिरा आवास योजना की और ख़ास तौर पर इनके तहत अकलियती बरादरियों को मिलने वाले फ़वाद, उसकी अहमियत और उसके समाजी असरात पर। दोस्तों आपको बता दें कि इंदिरा आवास योजना क्या है। ये योजना का आगाज़ देही इलाकों के लिए घर और कच्चे मकानात में रहने वाले गरीब खानदानों को पक्के घर फराहम करने के मकसद से किया गया था। इस स्कीम के जरिए मुआशरे के कमज़ोर तबकात और अकलियतों को माली इमदादी मदद दी जाती थी ताकि वो महफूज और बाइज्जत रिहाइश हासिल कर सकें। बाद में इस स्कीम को मजीद वसत दी गई और उसे नए अंदाज में आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाफिज किया गया, जिसका मकसद हर मुस्तहक खानदान को रिहाइश फराहम करना है। हमारे मुल्क में बहुत

0: एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। और तीसरी बात तो यह है कि आप देख लीजिए कि आजकल शहरों में कितनी गर्मी बढ़ रही है,
1: हाँ,
0: एक तरफ, दूसरी तरफ शहरों में पेड़ पौधे घट रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
1: हाँ,
0: इंडस्ट्री हो रहा है, तो सिविलाइजेशन जिस तरह से बढ़ेगा,
1: इंडस्ट्री के साथ साथ देखिएगा जितना ना, मतलब जो रहायशी मकान जिसको बोलते हैं, जो घर वगैरह ज्यादा बन रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो हमारे यहाँ कच्ची मिट्टी वाला जो जमीन होता है ना, वो कम होता जा रहा है, पक्की जमीन ज्यादा हो रही है हमारे यहाँ, तो जिसकी वजह से देखिएगा आपके हमारे यहाँ पेड़ पौधे कट जा रहे हैं, उसकी जगह हमारे यहाँ फैक्ट्री या फिर घर बन जा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आजकल काफी शहरी इलाके में जहाँ पे नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, वहाँ पे एक रूल बन होने को आ रहा है कि आपको एक हिस्सा मिट्टी का छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे जो हो रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल जिसको कहते हैं, मतलब भूमि के अंदर जो पानी का स्तर होता है, वो धीरे धीरे घट रहा है। इसीलिए हम पहले, अब सोचिए कि हमारे बचपन में हम कितने ट्यूबवेल देखते थे,
1: हाँ, बिल्कुल,
0: हाँ, है ना, हाँ, हाँ। जो मिट्टी के अंदर नल घुसा के वहां से पानी निकाला जाता था,
1: जी जी,
0: आज हम गिने चुने ही देखते हैं,
1: हाँ, हाँ।
0: मिट्टी का जो पानी का स्तर है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो थोड़ा थोड़ा घटते जा रहा है, तो इसके लिए ध्यान में रखने लायक चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फॉरेस्ट कवर, देखिए फॉरेस्ट कवर के बारे में हमको जानना पड़ेगा। इंडिया का फॉरेस्ट कवर होता है कि खुले वनांचल जो कंजर्व फॉरेस्ट होते हैं, और उसके साथ साथ अर्बन फॉरेस्ट्री, मतलब हाँ, जो गांव में या शहरों में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, सबको मिला के वो उसे कहा जाता है फॉरेस्ट कवर। तो आज मतलब लास्ट जो रिपोर्ट आया था 2023 तक, उसमें फॉरेस्ट कवर का बस इंडिया का 25% फॉरेस्ट कवर अभी हमारे पास है, लगभग 25% कुछ होगा। लेकिन ये 1988 में एक रूल आया था, जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी में 1988 में एक लाया गया था कि इसको हमें 33% तक इसको करना है। तो देख लीजिए 1988 में जो टारगेट सेट हुआ था 33% का, वो आज 2023 के रिपोर्ट तक हमारे पास 25% का है, मतलब 8% का डेफिसिट में अभी भी चल रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी।
0: फॉरेस्ट कवर क्या है, उसका है, मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है,
1: जी,
0: इस बारे में सभी को जागरूक करने के लिए भी वन महोत्सव बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: पूरा वन वीक, इसीलिए हम इसको मनाते हैं।
0: जी
1: जी, देखिए मैं आपको बताती भी चलूं कि वन का मतलब होता है संस्कृत जबान का ये एक लफ्ज है जिसके माने होते हैं जंगल, और महोत्सव के माने होते हैं त्यौहार भी, महोत्सव माने बड़ा त्यौहार, इसीलिए हम इसको पूरे एक वीक मनाते हैं। कोई त्यौहार देखिए एक दिन मनाते हैं हम, लेकिन ये महोत्सव है, इसे हम पूरा एक दिन मनाते हैं, और इसका मकसद ही होता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जंगलात को प्रमोट करें, दरख्तों की हिफाजत करें, जंगलों की हिफाजत करें। अगर मैं आपसे सवाल करूं तो बिल्कुल मुनासिब होगा कि ये जो पेड़ है ना, ये ट्रीज जो हमारे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे ह्यूमन लाइफ की जिंदगी के लिए पूरा कितने महत्व है।
0: इंसान जैसे जैसे, मैं एक बात मानता हूं कि जिस तरह से जैसे जैसे इंसान सिविलाइज्ड होता जा रहा है, वो अपने ही बारे में सोचने में लगा हुआ है।
1: जी।
0: आप मान लीजिए कि सभी को पता है कि हम जो जिंदा है तो पेड़ की वजह से,
1: जी,
0: क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो खुद के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
1: हाँ,
0: और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं,
1: जी,
0: वो ऑक्सीजन लेके हम जिंदा हैं। लेकिन क्या होता है कि हम ही अपने खुशी के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए काफी हद तक पेड़ पौधे काटते रहते हैं। अब ये बात है कि इसमें एक बैलेंस भी लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो रास्ते भी बनने चाहिए। रास्ता तो बनना सी जाहिर बात है, 4-लेन या 6-लेन हाईवे बन रहा है,
1: हाँ, बिल्कुल।
0: वो किस लिए? क्योंकि प्रेशर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हमको बैलेंस भी करना पड़ेगा कि इक्वली पेड़ लगाना है, और पेड़ लगाने से सिर्फ नहीं चलेगा। देखिए पेड़ लगाना तो एक बात है, लेकिन जैसे कि बच्चों का जन्म देना और बच्चों की परवरिश करना, ये दो इम्पोर्टेंट बात है। तो इसी तरह से आप पेड़ एक जगह पे लगा दिए, लेकिन उसके आसपास कोई घेरा नहीं लगाया,
1: हाँ,
0: तो क्या होगा? मवेशी आके भेड़ बकरी खा उसको खा के चला
1: जी, हाँ, वो तो होता है।
0: दूसरी बात, पेड़ लगा के चले गए, फोटो खिंचवा लिए, लेकिन वहां पे उसको ठीक तरह से वाटरिंग, उसको पानी डालना पड़ता है,
1: खाद पानी
0: सब मिलना चाहिए। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि पेड़ की देखभाल करना। और इंसानी जिंदगी को अगर आप मतलब एक तरफ रखें, दूसरी तरफ अगर हम जंगल की बात करें, प्रॉपर खुले जंगल, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया जो हम जिसे बोलते हैं, उस जंगल में जो डिफॉरेस्टेशन का इशू है, मतलब

0: काटने का,
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसानी जिंदगी पर पड़ता है।
1: मतलब एक तरफ इंसान अपनी जिंदगी को ज्यादा तरक्की करने के लिए पेड़ काट रहा है और वो उसी चीज को काट रहा है जिस पर वो खुद डिपेंड है, बताइए।
0: बिल्कुल इसी तरह,
1: और सिर्फ हम नहीं डिपेंड है, वाइल्ड एनिमल्स भी तो उस पर डिपेंड है।
0: हाँ, वाइल्ड एनिमल्स का डिपेंडेंस कितना लेवल तक है ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हर एक जंगल में मैं आपको एक टर्म, एक बात बताता हूँ, एक शब्द आता है कीस्टोन स्पीशीज।
1: अच्छा।
0: देखिए कीस्टोन क्या होता है, कोई बड़ा वाला मंदिर या कोई मस्जिद, मतलब कोई बड़ा सा एक बिल्डिंग का, पुराने जमाने में जो बनते थे उसका स्ट्रक्चर पकड़ लीजिए, उसमें एक मेन पत्थर होता था, उसे कहा जाता था कीस्टोन। वही कीस्टोन पूरे बिल्डिंग का मतलब वजन उठाता था।
1: अच्छा।
0: अगर आप वो उस कीस्टोन को अगर आप हटा दे तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा। वन के लिए मतलब या वाइल्ड जंगल के लिए ये कीस्टोन स्पीशीज का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उस स्पीशीज के लिए, उस कुछ जानवरों के लिए जो इस पूरे जंगल जंगल को, आप मान लीजिए कि जंगल का एक एक हेल्थ है, हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, तो इसी तरह जंगल का स्वस्थ रहने के लिए वो कीस्टोन स्पीशीज उसे कहा जाता है। तो कीस्टोन स्पीशीज के एग्जांपल में हम आपको बाघों की बात कर सकते हैं, टाइगर। क्यों उसे कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है? देखिए टाइगर होता है एपेक्स प्रीडेटर, मतलब जो इकोसिस्टम है उसका जो फूड चेन होता है, फूड चेन में सबसे ऊपर का खाने वाला। तो आप जंगल से टाइगर को हटा दीजिए,
1: पूरा चेन
0: सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जंगल में तब हिरन या जंगली सुअर इतने बढ़ते जाएंगे
1: जी,
0: वो पूरा जो ग्रासलैंड उसको खत्म कर देगा।
1: हाँ।
0: और उसके साथ साथ बफर एरिया में पूरे ग्रीनरी गांव पे भी उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा।
1: हाँ।
0: सिर्फ बाघ नहीं है, एक जानवर होता है गिद्ध, वल्चर्स।
1: हाँ हाँ।
0: वल्चर्स क्या करता है, वल्चर्स वो मरे हुए जानवर को खाता था
1: जी।
0: लेकिन कई दशक से वल्चर्स का लगभग एक्सटिंक्ट होने को कागार में
1: नहीं देखते,
0: गिद्ध नहीं देखते। उसके लिए कारण भी है इंसान
1: जी।
0: इंसान अपने मवेशियों को एक दवाई खिलाता था जिसका नाम था डाइक्लोफिनेक।
1: जी जी हाँ।
0: वो डाइक्लोफिनेक वाला खाके जब मवेशी मर जाता था,
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो गिद्ध उसके मांस खाकर वो डाइक्लोफिनेक उसके बॉडी में बायोमैग्निफिकेशन करता था। डाइक्लोफिनेक गिद्ध के बॉडी में जाके इतना तेजी से उसकी बढ़ोतरी होती थी तो गिद्ध के किडनी खराब हो जाते थे।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से सारे के सारे गिद्ध मर गए। अभी आर्टिफिशियली हालांकि गिद्ध को पाला मतलब छोड़ा जा रहा है इंक्लोजर में,
1: हाँ हाँ।
0: उसका ब्रीडिंग करके जंगल में फिर से छोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह अब गिद्ध जब नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपके इलाके में फेरल डॉग्स का प्रॉब्लम बढ़ेगा। फेरल डॉग्स क्या होता है, आपके आसपास चलने घूमने फिरने वाले गांव के जो कुत्ते होते हैं,
1: हाँ।
0: वो सब कुत्ते एक झुंड बना लेते हैं
1: जी जी, हाँ।
0: झुंड बनाकर उधर चले जाते हैं जहाँ पे मरे हुए मवेशी मरे हुए जानवर बैठे हो,
1: बिल्कुल
0: उसका मांस वो खाते हैं। फिर क्या होता है, उस जानवर में इसी फेरल डॉग्स कुत्तों से वहां पे डिस्टेंपर, कैनाइन डिस्टेंपर जैसे डिजीज फैलते हैं। अब आप समझ लीजिए जंगल के बफर जोन में मरा हुआ मवेशी का लाश है, वहां पे ये कुत्ते, गांव से कुत्ते आके उसको खा रहे हैं, क्योंकि गिद्ध नहीं है, खाने वाला गिद्ध चला गया, हम इंसानों ने खत्म कर दिया उसको, तो कुत्ते खा रहे हैं। कुत्ते खा के उनमें से कुछ कुत्ते वही मांस पे के ऊपर कैनाइन डिस्टेंपर का डिजीज जो वायरस उसको फैला दिया। फिर रात को जंगल से एक बूढ़ा लंगड़ा या भूखा शेर, बाघ हो या बब्बर शेर हो, वो आके उसको जब खाएगा, जंगल के वाइल्ड एनिमल पर भी वो कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज वो फैल सकता है
1: जी।
0: तो इस तरह से एक पूरा चेन सिस्टम चल रहा है, ये पूरा एक बैलेंस जो सब ये मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, जंगल को ठीक से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा
1: जी। मतलब वन जो है, जंगल जो है, सिर्फ इंसान के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ उससे हमें ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, बल्कि हम अगर कहें कि पूरी प्रकृति जो है माती है, पूरी दुनिया जो वर्ल्ड है, उसको एक बैलेंस में चलाने के लिए, उसको पूरे इकोसिस्टम उसको सही रखने के लिए वन जो है ना वो हमारा बेस है। अगर वन खत्म होता है तो समझिए पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, पूरा हमारी पूरी प्रकृति खत्म हो जाती है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। अगर इस हवाले से अगर आप कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे, जब आप जाया करते थे जंगलों में तो आपने क्या देखा और क्या पाया?
0: ये जैसे कि आपने हमें अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करने के लिए कहा, तो महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है चंद्रपुर जिले में, ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो उधर ताड़ो

0: में हम जब गए थे वहाँ का एक अगरजरी बफर जोन है, अगरजरी नाम का, उस बफर जोन में वहाँ पे एक बूढ़ा लंगड़ा एक शेर होता था, उसका नाम था शंभू। तो शंभू क्या बफर जोन में आ गया। बफर जोन क्या होता है कि जंगल के आसपास, मतलब आप मान लीजिए कि जंगल में होता है कोर जोन, उसके बाद बफर जोन, और बफर जोन के बाद गांव शुरू।
1: अच्छा,
0: तो बफर जोन गांव और इंसानी जो रिहायशी इलाका है और कोर इलाका है,
1: बीच में,
0: इसके बीच में होता है बफर। तो बफर जोन में ये बूढ़ा बाघ शंभू वहीं पे रहता था। तो एक दिन हमने जाके देखा कि हम जिप्सी में थे, तो देखा कि वो शंभू जंगल से, वो गांव से एक बैल को लेके आया। तो बैल ऐसा ही पड़ा हुआ था उधर, मतलब बैल का डेड बॉडी हुआ बहुत, वो आराम कर रहा था। तो ये जो शंभू हो गया, जैसे और जैसे बहुत सारे बाघ होगा, शेर होगा, ये जब बफर जोन या गांव के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। शब्द हम यूज करते हैं इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि आप जंगल में उसके रहने लायक खाना, पेड़ पौधे, अगर वो घास खाता हुआ कोई प्राणी हो, हिरन वगैरह, सुअर वगैरह अगर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो इंसानी इलाकों में आ जाते हैं। जैसे गोरुमारा फॉरेस्ट में नॉर्थ जलपाईगुड़ी का, वहां पे हमने एक हाथी रात के 1:30 या 2:30 बजे हमारे घर के, हमारे रिसोर्ट के आसपास चक्कर लगा रहा था, क्योंकि उसके उस दिन सुबह को उस हाथी के रास्ते पे वो जंगल क्रॉस कर रहा था, और काफी मेन रोड के ऊपर गाड़ी का लाइन लगा हुआ था
1: जी।
0: वहीं पे एक आदमी उतर के उस हाथी को, हाथी की तरह वैसे ऐसे हाथ हिलाता रहा।
1: अच्छा,
0: तो हाथी वो क्या कर रहा था, चुपचाप पेड़ पौधे पत्ता वत्ता खा रहा था
1: जी।
0: अभी जो जैसे वो एक्शन देखा, हाथी पलटा, पलट के उसके तरफ आया, सूंड में उठाया, उसको एकदम कुचल के मार दिया। फिर उसके बाद वो हाथी मतलब वो एकदम साइको सा हो गया था, पूरा इलाके में घूमता रहता था, और घूमते घूमते कहीं पे किसी के घर तोड़े। अभी इसके लिए एक कारण यह है कि जंगल में जो इल्लीगल लॉगिंग बहुत बढ़ चुका है। इल्लीगल लॉगिंग मतलब जंगल का पेड़ काट के जो जिसका स्मगलिंग होता है, ये बहुत सालों से होता जा रहा है, ऐसे कि नहीं,
1: पेड़ों की जो तस्करी होती
0: है, पेड़ों की जो काटों की लकड़ी की तस्करी होती है। तो मेन बात यह है कि हम जंगल को जंगली जानवरों के रहने लायक छोड़ नहीं रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसी तरह से इस बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा।
1: लेकिन मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि वन महोत्सव 2026 का इस बार का थीम क्या, जैसे कि पिछले बार का थीम था हमारा एक पेड़ माँ के नाम, तो इस बार हमारा थीम क्या है?
0: 2026 के वन महोत्सव का जो थीम है वो बहुत ही समय उपयोगी है, मतलब इस टाइम के लिए बहुत ही काम का है, हम रिलेट कर सकते हैं। वो है हीलिंग द अर्थ थ्रू ग्रीनर इनिशिएटिव्स।
1: अच्छा,
0: इसका मतलब क्या होता है? हील करना मतलब बॉडी को स्वस्थ करना।
1: जी जी।
0: हीलिंग द अर्थ मतलब धरती को स्वस्थ करना, किस तरह से? थ्रू ग्रीनर इनिशिएटिव्स। देखिए, जो एनर्जी है, मतलब इंसान को हो या पूरी दुनिया को, धरती को, या टोटल सिविलाइजेशन की बात करें, चलने के लिए एक ही चीज चाहिए होता है, वो होता है एनर्जी, ऊर्जा। अब ये ऊर्जा को हम दोनों हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब आप मान लीजिए कि नॉन रिन्यूएबल, एक बार जो आपने खर्च कर दी उसको आप वापस नहीं ला सकते, तो उसके वजह से उसके जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बायोफ्यूएल
1: जी।
0: तो इसी तरह से,
1: तो ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वन के हिफाजत के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रही है।
0: गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ये चल रहा है 2026
1: जी।
0: 2030 तक गवर्नमेंट ने एक टारगेट लिया है
1: जी
0: कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में चालू होगा, 500 गीगावाट का। और 2030 तक जो एमिशन, जो फॉसिल फ्यूल का एमिशन चल रहा है, उसको 45% तक घटाना है, और 2070 तक जीरो एमिशन कंट्री बनाया जाएगा इंडिया को।
1: और मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी आपसे ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि ये जंगल और क्लाइमेट चेंज क्या संपर्क है दोनों का?
0: क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बर्निंग इशू है, आज से नहीं, काफी कुछ सालों से। जंगल को कहा जाता है कि बहुत सारे नदियों का उत्स होता है
1: जी।
0: जंगल से बहुत सारी नदी
1: भी निकलती है,
0: निकलती है, जैसे कि आप नर्मदा मान लीजिए, नर्मदा निकलता है अमरकंटक से
1: जी।
0: तो इसी तरह से बहुत सारी नदी निकलते हैं जंगल से। जंगल बारिश लाती है, जहाँ पे जंगल होता है, जैसे कि हम सुने हैं, आप सभी को मालूम होगा, रेन फॉरेस्ट होता है।
1: बिल्कुल, रेन फॉरेस्ट।

0: रेन फॉरेस्ट
1: जी,
0: है ना, तो इस सब रेन फॉरेस्ट को अभी कुछ सालों से बहुत काटा जा रहा है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, एक शब्द आता है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अर्बन मतलब शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों में हम काफी, मतलब एक नदी में एक छोटा सा
1: टापू होता है।
0: तो उस आइलैंड में, शहर में आइलैंड की तरह छोटा छोटा जगह, थोड़ा छोटा छोटा पॉकेट हो बनता है जहाँ पे हीट बहुत एक्सट्रीम। ये भी एक क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है। एक शहर, इस शहर के बाहर अगर देखेंगे तो उधर गांव है, उसका उतना ज्यादा हीट नहीं होगा। यहाँ पे जो नैरो शहरी कैनियन बनता है, जो ऐसे नैरो नैरो लेन, वहां पे एयर सर्कुलेशन ठीक से आता नहीं।
1: हाँ हाँ।
0: और हीट वेव, हीट बहुत ज्यादा देर तक उसको अट्रैक्ट करता है।
1: हाँ हाँ।
0: तो जैसे कि कंक्रीट से बना हुआ है, तो कंक्रीट के चलते पूरा हीट उसको दिन भर वो एब्जॉर्ब होता रहता है, और रात में वो हीट जो रिलीज होगा,
1: हाँ,
0: रिलीज बहुत स्लोली होता है।
1: स्लोली
0: तो इसे कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट।
1: लाइक मी, यहाँ सिटी में जहाँ भी देखिए, इतने पास पास बिल्डिंग्स बन गई थी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन गई और सब सीमेंटेड है, तो हम शहर को किस तरह से ठंडा करने की कैसे कोशिश करें? रूफ,
0: देखिए एक तो बात यह है कि रूफ टॉप गार्डन का जो आपने जिक्र किया है
1: जी,
0: वो बहुत ही लाभदायक है। वो रूफ टॉप गार्डन आप बनाएंगे तो आप, मतलब आपको अपने तरफ से आप एक पार्टिसिपेट करेंगे कि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए मैंने छोटा सा हिस्सा रखा। आपका जो आखिरी सवाल है, इसके लिए जो कार्बन फुटप्रिंट है हम लोगों का, कि हम कितना CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इस तरह के जितने ग्रीन हाउस गैस, हम सभी का, सभी जिम्मेदार है कुछ ना कुछ तरह से इस ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए। और ग्रीन हाउस गैस अल्टीमेटली सभी को पता है कि वो उधर ऊपर जाके हीट को रोक देता है
1: जी।
0: तो धरती का जो हीट है वो रेडिएट होकर बाहर निकल नहीं सकता,
1: हाँ।
0: वो वापस आता है। तो यही मेन चीज होता है ग्लोबल वार्मिंग का।
1: बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, आपने बहुत सारी मालूमात हमें दी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को, मेरे ऑडियंस को, आप, हमारी और आपकी गुफ्तगू जरूर पसंद आएगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
2: दोस्तों। भी आप सुन रहे थे वन महोत्सव पर ये गुफ्तगू, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर सैकदास साहब, और उनसे बातें कर रही थी सूफिया शेरिन। अब वक्त हो चला है हफ्त रोज़ा प्रोग्राम तख्लीक़े कुदरत का, जिसमें हम कुदरत की अता करदा नेमतों, फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों के फवायद से आपको रोशनास कराते हैं। आज का मौजू है एक ऐसा मुनफरिद और गजाइत से भरपूर फल जिसे दुनिया भर में सेहत का ख़जाना कहा जाता है, और वो है कीवी। बाहर से भूरा और हल्के रुएं वाला, लेकिन अंदर से चमकदार सब्ज रंग और स्याह नन्हे बीजों से मजीद ये फल न सिर्फ देखने में खूबसूरत है, बल्कि बेशुमार गजाई फवायद भी रखता है। कीवी का असल ताल्लुक चीन से है, इसलिए इसे कभी चाइनीज गोरबेरी भी कहा जाता है। बाद ऐसा न्यूजीलैंड में इसकी बड़े पैमाने पर काश्त होती है, और वहाँ के कौमी परिंदे कीवी के नाम पर इस फल को भी कीवी कहा जाने लगा। आज ये दुनिया के कई ममालिक में उगाया और शौक से खाया जाता है। सामिन, कीवी गजाई अज्जा से भरपूर फल है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फाइबर, पोटेशियम और मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। यही अज्जा से सेहत बख्श फलों की फहरिस्त में नुमाया मुकाम देते हैं। जानते हैं कि कीवी खाने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। पहला फ़ायद, कुव्वत मुनाफत में इजाफा होता है। कीवी में विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो जिस्म के दफाई निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद देती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि हाजमा बेहतर बनाता है। कीवी में फाइबर और कुदरती एंजाइम पाए जाते हैं, जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं और कब्ज़ से बचाने में मावन साबित होते हैं। इसके अलावा दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत के लिए मुफीद समझे जाते हैं, और मतवाजन गजा के हिस्से के तौर पर खून की नालियों की सेहत बरकरार रखने में मदद देते हैं। और इसके अलावा जिल्द की खूबसूरती भी इससे बहुत नुमाया होती है। विटामिन सी जिसमें कोलेजिन बनाने में मदद देता है, जिससे जिल्द तरोताज़ा और सेहतमंद रहने में मावन मिलते हैं। पांचवा फ़ायदा, आंखों की हिफाजत होती है। कीवी में ऐसे गजाई अज्जा मौजूद होते हैं जो आंखों की सेहत बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। छठा फ़ायदा है वजन में तवाजन कायम करना। कैलोरीज और ज़्यादा फाइबर की वजह से कीवी देर तक पेट भरने का एहसास दिलाता है, इसलिए मतवाजन गजा में इसे शामिल किया जाता है। कीवी को ताज़ा फल के तौर पर खाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रूट चाट, सलाद جوس، دہی اور مختلف میٹھے پکوانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی پھل سے الرجی ہو یا وہ کسی خاص

है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो घने बज चुके हैं 12 और आपका दोस्त अंकित हाजिर है कार्यक्रम लेके सुरभि। और सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले चर्चा है और चर्चा में दोस्तों हम बात करेंगे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में। दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 13 जून 1953 में। शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। 1943 से 1946 तक वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया था, 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की, 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वे विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अल्पायु में ही विद्याध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर ली थी। 33 वर्ष की अल्पायु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर आगे बढ़ती गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलख जगाने के लिए उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। उन्होंने बहुत से गैर कांग्रेसी हिंदुओं की मदद से कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया। इस सरकार में वे वित्त मंत्री बने। इस समय वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा के सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था। वह सांप्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। सांप्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने ये सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिंदुओं की उपेक्षा ना हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि विभाजन संबंधी उत्पन्न हुई परिस्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों में से थी। वे मानते थे कि आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही रक्त के हैं, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है। परंतु उनके इन विचारों को अन्य राजनीतिक दल के तत्कालीन नेताओं ने अन्यथा रूप से प्रसारित किया। बावजूद इसके लोगों के दिलों में उनके प्रति अथाह प्यार और समर्थन बढ़ता गया। अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने जंग की राह पकड़ ली और कलकत्ता में भयंकर बर्बरतापूर्वक अमानवीय मारकट हुई। उसी समय कांग्रेस का नेतृत्व सामूहिक रूप से राष्ट्रसेवी था। ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यंत्र को एक कांग्रेस के नेताओं ने अखंड भारत संबंधी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खंडित भारत के लिए बचा लिया। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया, किंतु उनके राष्ट्रवादी चिंतन के चलते अन्य नेताओं से मतभेद बराबर बने। फलतः राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में बड़ा दल था। अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ। मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। वहां के मुख्यमंत्री वजीर आजम अर्थात प्रधानमंत्री कहलाता था। संसद से अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने को भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती दी थी कि अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये तो थी चर्चा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर।

वाले सिस्टम पर अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। यदि आपके सोलर पैनल द्वारा उत्पादित बिजली घर की खपत से अधिक होती है तो आप उस अतिरिक्त बिजली को ग्रिड डिस्कॉम को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। योजना के तहत नाम मात्र ब्याज दर पर 90% तक का कोलेटरल फी सोलर लोन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पीएम सूर्य घर पोर्टल पर जाएं। आवेदन के लिए अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करें। अपना राज्य बिजली वितरण, अपनी डिस्कॉम और उपभोक्ता खाता संख्या यानी कस्टमर नंबर दर्ज करके रजिस्टर करें। वेंडर का चयन, लॉगिन करके अपनी डिस्कॉम द्वारा अनुमोदित वेंडर्स में से किसी एक को चुने और सोलर पैनल लगवाए। सब्सिडी, इंस्टॉलेशन और नेट मीटर लगाने के बाद पोर्टल पर विवरण अपलोड करें और सब्सिडी की राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये तो थी पहल पीएम सूर्य घर योजना पर। अब हम बढ़ेंगे कुछ फिल्मी गीतों की तरफ। आइए सुन लेते हैं पहला गीत आप लोगों के लिए।

फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से दोस्तों आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मनी की आवाज में। संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने और बोल से सवारा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। दोस्तों 12:11 हो चुके हैं, अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है सुरभि आपकी अपने चैनल पर यानी आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता पर। दोस्तों मैं रहूंगा इस कार्यक्रम में 12:20 तक आपके साथ सुना रहा हूं कुछ बेहतरीन गीत और आप हमारे ये कार्यक्रम सुन सकते हैं 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर या फिर न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप पर भी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत।

फिल्म दिल बेचारा से दोस्तों जोनिता गांधी और हृदय कट्टानी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। ए आर रहमान ने सजाया था, संगीत से अमिताभ भट्टाचार्य ने सवारा था बोल से। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा मधुशी और नरेश अय्यर की आवाज में फिल्म रंग दे बसंती से, और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद, तब तक के लिए नमस्कार। और अगला कार्यक्रम इस गीत के बाद होगा थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर

7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the three-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
1: In Ukraine, at least 10 people were killed and 46 others were injured after Russia launched a ballistic missile attack on the capital, Kiev, this morning. This came a day before a key NATO summit in Turkey, which U.S. President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. announced his retirement from international football after the five-time world champions suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a seventh consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovic Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarterfinal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Priyanka Arora. मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना उन्होंने कहा यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सुधारों डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है सरकार ने कहा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित मध्य महाराष्ट्र गुजरात गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं एक रिपोर्ट
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है जिसमें रक्षा सहयोग व्यापार निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन

0: होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
3: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13

0: 14 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी, मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
1: जगन्नाथ तकानेन। दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि

0: खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में दो दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে তবলা পরিবেশন করবেন পণ্ডিত পরিমল চক্রবর্তী। তাল, ঝাপতাল এবং রূপক শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেছেন হিরণময় মিত্র।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হলো সঞ্জয়িতা প্রচার তরঙ্গে দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। একটু পরেই শুনবেন খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति।

मिलती है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 5:20:25 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका। उर्वशी के झरोखा में आज हम आपको बताएंगे छोलिया नृत्य के बारे में, जो उत्तराखंड की वीरता, संस्कृति और लोक परंपरा का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। भारत अपनी विविध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कलाओं और लोक नृत्यों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। देश के प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, जो उसके इतिहास, समाज और जीवन शैली को प्रतिबिंबित करती है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर भी अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, रीति रिवाज और पारंपरिक कलाएं सदियों पुरानी विरासत को संजोए हुए हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लोक नृत्य है छोलिया नृत्य। यह नृत्य उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की पहचान माना जाता है और अपनी वीरता, उत्साह, शौर्य तथा सांस्कृतिक गरिमा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। छोलिया नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि यह उत्तराखंड के इतिहास, संस्कृति और वीर परंपरा का जीवंत प्रतीक है। तलवार और ढाल के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य दर्शकों में उत्साह, रोमांच और गौरव की भावना उत्पन्न करता है। आज भी यह नृत्य विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक उत्सवों का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है।

छोलिया नृत्य का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका संबंध उत्तराखंड के कत्यूरी और चंद राजवंशों के काल से है। उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में राजाओं और योद्धाओं की परंपरा अत्यंत मजबूत थी। विवाह समारोह में जब बारात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी तो रास्ते में डाकुओं, जंगली जानवरों और शत्रुओं से सुरक्षा का खतरा बना रहता था, इसलिए प्रशिक्षित योद्धा तलवार और ढाल लेकर बारात के साथ चलते थे और अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा प्रदान करते थे। धीरे धीरे यह युद्ध प्रदर्शन एक सांस्कृतिक परंपरा में परिवर्तित हो गया और बाद में लोक नृत्य के रूप में विकसित हुआ। यही परंपरा छोलिया नृत्य के रूप में जानी जाती है। छोलिया नृत्य का मूल उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साहस, सुरक्षा और शौर्य का प्रदर्शन था।

छोलिया शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शब्द छोल या छोला से बना है, जिसका अर्थ युद्ध पोशाक या सैनिक वेशभूषा होता है। चूंकि इस नृत्य में कलाकार योद्धाओं की तरह वेशभूषा धारण करते हैं और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं, इसे छोलिया नृत्य

कहा जाता है। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी वीरता और ऊर्जा है। इसमें नर्तक हाथों में तलवार और ढाल लेकर युद्ध की मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं। उनकी गतिविधियां अत्यंत तेज, संतुलित और आकर्षक होती है। नृत्य के दौरान ऐसा प्रतीत होता है मानो दो योद्धा वास्तविक युद्ध का अभ्यास कर रहे हों। इस नृत्य की वेशभूषा अत्यंत आकर्षक और पारंपरिक होती है। नर्तक विशेष प्रकार के परिधान पहनते हैं जिनमें रंग बिरंगे वस्त्र, पगड़ी, कमरबंद और अन्य सजावटी सामग्री शामिल होती हैं। उनके हाथों में चकमकदार तलवार और ढाल होती है जो नृत्य की वीरता को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विवाह समारोह में छोलिया नृत्य का विशेष महत्व है। परंपरागत रूप से जब दूल्हे की बारात निकलती है तब छोलिया कलाकार उसके आगे आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शुभता, सुरक्षा और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। यह नृत्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। यह समाज में एकता, भाईचारे और सामूहिकता की भावना को मजबूत करता है। यह नृत्य लोगों को उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। छोलिया नृत्य केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सवों, गणतंत्र दिवस परेडों, राज्य स्तरीय कार्यक्रमों तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजनों में इसकी प्रस्तुति ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। कहा जा सकता है कि छोलिया नृत्य केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि उत्तराखंड की वीरता, संस्कृति, परंपरा और गौरव का जीवंत प्रतीक है। यह नृत्य हमें हमारे इतिहास, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक एकता की याद दिलाता है। झरोखा में भी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के छोलिया नृत्य के बारे में। और आइए अब कुछ फिल्मी नगमे।

आई सुंदर अगला गीत सोनू निगम, उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में, फिल्म है मुझसे शादी करोगी। गीतकार हैं जिल सहलवानी और संगीत साजिद वाजिद का है।

आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म ना तुम जानो ना हमसे। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और पामेला जैल। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत राजेश रोशन का है।

अरे सुन दे, अगला नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म है कोई मिल गया। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत राजेश रोशन का है।

0: आइए उर्वशी कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। गायक कलाकार है मोहम्मद रफी, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: कभी हमने

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

0: North Orissa coast during 6 July 2026 to 7 July 2026. This is the end of the weather warning for Kolkata for the next 24 hours. Some of the program highlights of the evening transmission of the Sanchayata channel of Akashbani Kolkata at 6:10. There's Hindi program Varta presented by Roshan Murarka, followed by Hindi program Gul Gulshan at 6:30. At 7:10 in the evening, there's Shilpo Shonglap, followed by composite Hindi program Darpan at 7:30. 8 o'clock film music, followed by mixed melodies at 8:15. There's 9 spotlight at 9:16. Western music program Resonance from Yesteryears at 10:30 at night, presented by Ankita Sen, followed by Hindi film songs at 11:10 at night, followed by weather report program summary and close down at 12. This is the Sanchayata channel of Akashbani Kolkata, broadcasting on to 97.6 meters corresponding to 1008 kilohertz. Please stand by for the news in Hindi, followed by the news in English, to be relayed shortly from the Delhi station.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है।

उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रेडियो में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। वक्त हो रहा है हिंदी वार्ता का, आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता। विषय है वन महोत्सव, पेड़ बचाओ पानी बचाओ। प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत प्राचीन, गहरा और अभिन्न है। मानव जीवन का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों पर निर्भर करता है। वायु, जल, वन, भूमि और जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास के मूल आधार हैं। इनमें भी पेड़ पौधे और जल का महत्व सर्वोपरि है। पेड़ हमें शुद्ध वायु, छाया, फल, औषधियाँ और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करते हैं, जबकि जल जीवन का आधार है। यदि पेड़ और पानी न हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

आज विश्व तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन की समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके कारण वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे समय में पेड़ बचाओ पानी बचाओ का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रतिवर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा सके।

भारत में वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। इसके प्रणेता तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे। उन्होंने देशवासियों को वृक्षों के महत्व से परिचित कराने तथा वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी।

महाविद्यालय, सरकारी कार्यालय, सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आजीवन महोत्सव केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है।

वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, क्योंकि यह समय मानसून का होता है और पौधों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं। विद्यालय

प्राचीन काल से ही मनुष्य का जीवन वनों पर निर्भर रहा है। आदि मानवों का जीवन जंगलों में ही व्यतीत होता था। उन्हें भोजन, आश्रय, औषधि और सुरक्षा वनों से ही प्राप्त होती थी। आज भी लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर ही निर्भर हैं। वन न केवल मानव जीवन को सहारा देते हैं, बल्कि पृथ्वी के संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जलवायु नियंत्रण, वर्षा चक्र, मृदा संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के लिए आवश्यक है।

पेड़ पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। एक विकसित वृक्ष प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में कार्बन को अवशोषित कर पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता करता है। पेड़ हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मानव और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करते हैं तथा वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ जलचक्र को संतुलित रखते हैं और वर्षा को प्रभावित करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती प्रदान करती हैं और कटाव को रोकती हैं। पेड़ पौधे अनेक पशु पक्षियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। लकड़ी, फल, गोंद, रबड़, औषधियाँ और अनेक वन उत्पाद आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पेड़ तापमान को नियंत्रित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक होते हैं। जल को जीवन का आधार कहा जाता है। मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण सभी के लिए जल आवश्यक है। यद्यपि पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पीने योग्य मीठा जल अत्यंत सीमित है। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रही हैं कि यदि जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में जल संकट और गंभीर हो जाएगा। पेड़ और पानी एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पेड़ होते हैं वहां जल स्रोत अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। वृक्षों की जड़ें वर्षा के जल को धरती के भीतर पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिससे भूजल स्तर बना रहता है। वन क्षेत्र वर्षा के पानी को संग्रहित करके नदियों, तालाब और झीलों को जल उपलब्ध कराते हैं। यदि वनों की कटाई होती है तो भूजल स्तर गिरने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं और वर्षा का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए पर्यावरणविद कहते हैं कि पेड़ बचाओ और पानी बचाओ दोनों अभियान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज विश्व के अनेक देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। भारत में भी कई राज्यों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, उद्योगों और कृषि में अत्यधिक जल उपयोग के कारण जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि समय रहते जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसलिए जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना आवश्यक है। अंततः कहा जा सकता है कि वन महोत्सव पेड़ बचाओ पानी बचाओ वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पेड़ और पानी दोनों ही प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है।

0: यदि हम आज इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था वन महोत्सव, पेड़ बचाओ पानी बचाओ। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां संप्राप्तवान्। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अवदत् यत् सहकार आंदोलनम् परिष्कार अंकीकरण व्यावसायिक प्रबंधनानां माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300+ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते इति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य राजधान्यां जकार्तायां संप्राप्तवान्। जकार्ता विमानपत्तने इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यमुना स्वयं उपस्थाय प्रधानमंत्रिणः भव्यं स्वागतं विहितम्। तत्र स्थानीय समुदायेन प्रवासी भारतीयैश्च पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिभिः सह तस्य उत्साहपूर्णं अभिनन्दनं कृतम्। 2018-तमवर्षात् द्विपक्षीय संबंधानां व्यापक रणनीतिक सहयोग स्तरस्य प्राप्तेः परं प्रधानमंत्रिणः इयं प्रथमा द्विपक्षीय यात्रा अस्ति। श्रीमोदी प्रवासे राष्ट्रपतिना प्रवोवो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां विधाय संबंधानां समीक्षां विधास्यति। सहैव सांस्कृतिक नगरे योग्याकार्ता स्थितं ऐतिहासिकं प्रम्बानन मंदिर परिसरमपि द्रक्ष्यति, यत्र भारत इंडोनेशिया देशौ मिलित्वा संरक्षण कार्यं करिष्यतः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री जकार्ता नगरे प्रवासी भारतीयानां समूहमपि संबोधयेत्। प्रस्थानात् पूर्वं प्रदत्ते स्वकीय वक्तव्ये तेन निगदितं यत् प्रवासोऽयं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः महासागरीय दृष्टिकोणस्य सहैव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य च लक्ष्यं सुदृढीकरिष्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे 8 दिनांकात् 10 दिनांकं यावत् प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणः एंथनी अल्बनीज इत्यस्य निमंत्रणं स्वीकृत्य मेलबर्न नगरे गमिष्यति, यत्र सः रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश उच्च प्रविधि क्षेत्रेषु विस्तृत चर्चां विधास्यति। सहैव तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। अन्तिमे चरणे जुलाई मासस्य 10-11 दिनांकयोः सः न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्यस्य आवाहने ऑकलैंड नगरं प्राप्स्यति। विगत 40 वर्षेषु कस्यचित् भारतीय प्रधानमंत्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा वर्तते, यत्र आर्थिक व्यापारिक सहयोगं वर्धयितुं मंत्रणा भविष्यति। प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना अद्य आध्यात्मिक गुरुं पवित्रं परमं दलाई लामा वर्यं तस्य 190वें जन्मदिने शुभाशयाः प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य शान्तेः सौहार्दस्य च सन्देशः सम्पूर्णे विश्वस्मिन् जनानां कृते मार्गदर्शकशक्तित्वेन विद्यते। प्रधानमंत्री अवदत् यत् दलाई लामा वर्यस्य नैतिकं आध्यात्मिकं च जीवनं वैश्विक कल्याणार्थं तस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। अत्रावसरे सः दलाई लामा वर्यस्य दीर्घं स्वास्थ्यं च जीवनं प्रार्थयत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30:43 हुए हैं। वक्त हो रहा है गीत और गजल के कार्यक्रम गुलगुल सन का। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त रोशन मुरारका। आइए सुनते हैं सबसे पहले रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

गीत और गजल का कार्यक्रम गुलगुल सन यहीं तक। अब आपके दोस्त रोशन मराड़का को आज्ञा दीजिए, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्वभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में

0: सबसे पहले एक नज़र, आज हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था, भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें भारतीय राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और न्यायविद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कम आयु में ही शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की थीं। मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग आपूर्ति मंत्री में रहे। बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर एक अलग राजनीतिक विचारधारा का समर्थन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक राष्ट्रवादी नेता, प्रखर वक्ता, शिक्षाविद और दूरदर्शी राजनेता के रूप में स्मरण किया जाता है। उनके विचारों और योगदान का भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। ये थी एक नजर। और अब आइए वन महोत्सव पर वार्ता सुनते हैं। अतिथि हैं एरॉन जोडाराथुन और उनसे बातचीत कर रही हैं पापिया भट्टाचार्य।
1: नमस्कार। वन महोत्सव के इस बेहद खास, हरे भरे और तरोताजा कर देने वाले मौके पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना कि हरियाली है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में जब हम क्लाइमेट चेंज और कॉन्क्रीट के जंगल बढ़ने की बात करते हैं, तब हमें सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं बल्कि उन्हें एक साइंस और टेक्नोलॉजी की तरह देखने की भी जरूरत है। और इसी बदलाव को जमीन पर सच करके दिखाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास और दिलदार गेस्ट तशरीफ लाए हैं, जो पिछले लंबे समय से इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी रेस्टोरेशन और क्लाइमेट टेक इनोवेशन के क्षेत्र में एक बेमिसाल काम कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एरॉन एरॉन जी। एरॉन जी की अचीवमेंट्स की बात करूं तो आप दंग रह जाएंगे। इन्होंने और इनकी टीम ने न सिर्फ 10 मिलियन से ज्यादा मैनग्रूव प्लांट किए बल्कि 65,000 से ज्यादा अर्बन और मियावाकी सैपलिंग्स लगाए हैं। इन्होंने MOEFCC, इंडियन रेलवेज और कई बड़े बड़े स्टेट लेवल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारा है। एक नई प्लांट स्पीशीज तक डिस्कवर कर दी है और फॉरेस्ट मॉनिटरिंग के लिए एक AI पावर्ड DMRV सिस्टम तक बना दिया है। एरॉन जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: सबसे पहले मैं आपको वन महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। एरॉन जी, आपका काम बहुत बड़े और अलग अलग स्केल्स पर फैला हुआ है। एक तरफ आप लोग 37.5% यानी 37.5% अर्बन एफोरेस्टेशन और मियावाकी फॉरेस्ट पर काम करते हैं और दूसरी तरफ 20% एग्रो फॉरेस्ट्री और नेचुरल फार्मिंग पर फोकस्ड है। एक शहर में रहने वाले इंसान को और एक गांव के किसान को इन दोनों अलग अलग तरीकों से आप कैसे कनेक्ट करते हैं?
2: जी, हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप शहर में रहते हैं और हम लोग के डेली जो नीड्स आते हैं वो किसान से आते हैं। हम लोग के डेली खाना पीना जो भी है, इट इज ऑल अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। जी, ये बहुत ही एक अहम सवाल है। हमारे रोजाना जीवन, शहर के लोग के जीवन और किसान के जीवन बहुत इंटीग्रेटेड है। हम जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, हमारे जो फूड सोर्सेज है वो किसान से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे प्रोजेक्ट्स जो हम करते हैं वो किसान के लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए है। अभी इसमें आप और हम जो लोग शहर में रहते हैं, हम लोग उसको उस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन सर्टेन एनवायरमेंटल इंगेजमेंट प्रोग्राम्स। अभी जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस किसान के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, किसान के सेफगार्डिंग के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज, अनसीजनल रेन, ड्राउट, ये सब किसान को इफेक्ट कर रहे हैं। अभी आम आदमी के जो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक प्लांटेशन इनिशिएटिव में आप पार्टिसिपेट कीजिए, जहां की

0: यहाँ पे किसान को सपोर्ट दिया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग देम विद पेड़ पौधे एंड आल्सो नेसेसरी सपोर्ट, जो कि एक किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोन से सिर्फ एक किसान का लाइवलीहुड नहीं चल सकता है। लोन के लिए बहुत किसान सुसाइड करते हैं,
1: जी
0: जो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग उसको रिड्यूस करने चाहते हैं, इसलिए हम लोग कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज है उन लोग को हम लोग किसान के साथ इंगेज करवाते हैं, जहां की कॉर्पोरेट्स के कॉर्पोरेट द CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके द्वारा हम लोग किसान के लाइवलीहुड्स पे टच कर सके और उनको और स्ट्रेंथन कर सके।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और एलन जी, शहरों में जब हम गर्मी और पोल्यूशन से परेशान होते हैं, तब मियावाकी फॉरेस्ट मेथड एक जादू की तरह काम करता है, मैंने सुना है। हमारे लिसनर्स को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं कि ये मियावाकी मेथड क्या है और कैसे एक छोटी सी अर्बन स्पेस को हम एक घने जंगल में बदल सकते हैं।
0: जी, मियावाकी ये एक जापानीज तरीका है फॉरेस्ट्री का। उनका नाम डॉक्टर अकिरा मियावाकी है, जिन्होंने ये मेथोडोलॉजी फाउंड किए थे। अभी हम लोग जानते हैं जापान का पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। उधर में अर्बन स्पेसेस का बहुत स्केसिटी था, इसलिए डॉक्टर मियावाकी ने एक इनोवेटिव प्लांटेशन पैटर्न इन्वेंट किया है, जहां पे आप कोई भी जगह का स्थानीय पेड़, नेटिव पेड़, उस जगह का आप जहां पे उसको प्लांट कर सकते हैं। इसका मेथड होता है कि आप 1 square meter में 3 से 5 पौधे लगा सकते हैं। इसमें 4 तरह के पौधे के कैटेगरी आते हैं। पहला कैटेगरी है श्रब। श्रब कैटेगरी के पेड़ 10 से 20 फुट के हाइट तक पहुंचते हैं। उसके बाद है आपका स्मॉल साइज ट्री, जो आपके 30 to 40 feet हाइट तक पहुंचते हैं। उसके बाद है मीडियम हाइट ट्री, जो आपके 60 to 70 feet हाइट तक पहुंचते हैं। और फाइनली कैनोपी ट्री, जो आपके 80 feet एंड अबव तक पहुंचते हैं। अभी हम लोग 1 square meter जगह, डिपेंडिंग कौन सा जगह है, हम लोग उसी जगह के नेटिव और एंडेमिक प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं। उनके एलिलियो केमिकल्स, एलिलियो जो केमिकल्स और एलिलियोमेट्रिक इक्वेशंस जो है उसको मैच करते हैं, एंड देन हम लोग स्पीशीज सिलेक्ट करते हैं। एंड इन अ वेरी सिलेक्टिव, बहुत ही सिलेक्टिव पैटर्न में हम लोग ये चारों पेड़ के मिक्सचर्स 1 square meter के बॉक्स में प्लांट करते हैं। अभी मियावाकी का एक बहुत अच्छा लाभ है, जो फॉरेस्ट आपको 100 साल लगता है तैयार होने में, अगर आप मियावाकी मेथोडोलॉजी से प्लांटेशन करें, आप उस टाइमलाइन को ऑलमोस्ट 70 इयर्स तक घटा दे रहे हैं। अगर आप एक मियावाकी फॉरेस्ट प्लांट करें, इट विल बिकम अ मेच्योर्ड फॉरेस्ट आपके 20 से 30 साल के अंदर में, और उसमें बहुत बायोडाइवर्सिटी, बहुत फ्लोरा और फौना भी फ्लरिश होता है। अभी हम लोग पॉजिटिव इंडिया जैसे देश में, जहां शहरों में बहुत कम जगह है, मेरे को पर्सनली आई बिलीव दैट मियावाकी इज हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है टू कॉम्बैट आर हीट आइलैंड इफेक्ट दैट वी फेस इन आर सिटीज, एंड ऑल्सो द जो हीट वेव हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं इन दीज लास्ट फ्यू मंथ्स, ये सब हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं अगर हम लोग अर्बन ग्रीनिंग को और सीरियसली कंडक्ट करें और सीरियसली हम लोग थॉट दें इसको।
1: चलिए, तब तो ये 65,000 जो ये शहरों में पेड़ लगे हैं, वो काफी कमाल आपका या मूवमेंट आप जो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कमाल है। पर आपका एक और अहम आंकड़ा है, 10 million से ज्यादा मैनग्रूव्स प्लांट करना। हम सब जानते हैं कि कोस्टल एरियाज में मैनग्रूव्स साइक्लोन्स और इरोजन से बचने के लिए कितने जरूरी है, पर इतने बड़े स्केल पर मैनग्रूव रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना कितना बड़ा चैलेंज होता है, और इसमें लोकल कम्युनिटीज क्या रोल कर सकती हैं?
0: अभी अगर मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताओ, ये 10 million मैनग्रोव प्लांट करने के लिए हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ा, वुड बी नॉट द राइट वर्ड, बट हम लोग बहुत ये फुल प्रोसेस से गुजरे हैं। क्योंकि पहले बात, द लोकल जो लोकल कम्युनिटी है, अगर उनको अवेयरनेस नहीं दे पाए, वो लोग कोई प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं लेते। अभी हम लोग के सुंदरबन का मैनग्रोव प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ है, इज बिकॉज जो लोकल कम्युनिटी है वो लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड है विथ ऑल दी एनवायरमेंटल इश्यूज जो हो रहे हैं। अगर आप देखें, साइक्लोन्स आ रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, आम्फान कुछ साल पहले, फिर यश, और फिर बहुत सारे रिवर इरोशन।

0: इरोशन, एम्बैंकमेंट इरोशन हो रहा है, जहां पे खेती का जमीन डिस्ट्रॉय हो जा रहा है समुन्दर के पानी से. सो अभी हम लोग जब अप्रोच किए थे प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि लोकल्स ने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम फेस किया था, उन्होंने हम लोग के साथ बहुत योगदान दिया है और हम लोग को और ज्यादा ये प्रोजेक्ट को सफल करने में उन लोग का ही हाथ है. अभी जो प्रोजेक्ट हम लोग ने किया है, इट इज अ ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट, जहाँ की मैंग्रोव्स जहाँ पे डिग्रेडेड है, हम लोग वो पूरा कोस्ट लाइन को रिस्टोर कर रहे हैं. और जो कार्बन यील्ड होता है, एक पेड़ पूरा अपना लाइफ टाइम में वो सिर्फ कार्बन पे ही सर्वाइव करता है. अगर आप एक पेड़ का एनाटॉमी देखे, इट इज हाफ, मोर देन हाफ परसेंट ऑफ अ ट्री इज फुल ऑफ कार्बन. नाउ मैंग्रोव्स आर वन ऑफ सबसे बेहतर सिक्वेस्ट्रेशन मेथड्स है कार्बन के लिए, जब आप नेचुरल वे में इसको करने चाह रहे हैं. मैंग्रोव बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कोस्टलाइन के लिए, हमारे कोस्टलाइन कम्युनिटीज के लिए, क्योंकि वो कोस्टलाइन कम्युनिटीज को साइक्लोन्स, सुनामीज और दूसरे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स से बचाते हैं. अभी हम लोग का प्रोजेक्ट ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट है, जहां से हम लोग कार्बन का यील्ड, सो वन टन ऑफ CO2 इक्वल्स टू वन कार्बन क्रेडिट. अभी इंटरनेशनल मार्केट में आपका कार्बन क्रेडिट का अबाउट $40 to $50 वैल्यू चल रहा है. अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोस्टलाइन कम्युनिटीज के को अप्रोच करते हैं. वी अप्रोच द प्रधान, द ग्राम पंचायत, वहां से हम लोग को ग्राम से एलोकेशन मिलता है जमीन का, जहां हम लोग ये रेस्टोरेशन करते हैं. और सिंस दिस इज अंडर अ ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन जो यील्ड होता है, अ सर्टेन परसेंट ऑफ द कार्बन यील्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, हम लोग वो कम्युनिटी को गिव बैक करते हैं. इस तरह से ये एक सपोर्ट लाइन बनता है कम्युनिटी के लिए, जहां कम्युनिटी अपने लिए स्कूल्स बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं, जो भी उन लोग की जरूरतें हैं ये कार्बन फंड से वो लोग बना सकते हैं. और हम लोग ने ये किया है. So integrating carbon projects with livelihoods on the ground is India में अभी बहुत नया है, but इसका बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया scope है in the future, जहाँ पे हम लोग ऐसे carbon projects implement कर सकते हैं on the ground to help rural and कोस्टल livelihoods, जहाँ पे आदमी, जहाँ पे इंसान सबसे ज्यादा क्लाइमेट vulnerable है.
1: यहाँ पे गवर्नमेंट भी आप लोगों के साथ काम करती है?
0: जी, अंडर द मिष्टी स्कीम हम लोगों ने कुछ कुछ प्लांट्स लगाए हैं गवर्नमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट के सपोर्ट. बट ये जो कार्बन प्रोजेक्ट है, ये सब प्रोजेक्ट्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो लोग वॉलंटियरी कार्बन मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो लोग ही ये प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं और असेस करते हैं. और ये सब प्रोजेक्ट्स आपके 20-30 साल तक चलता है, जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस यील्ड मिलेगा.
1: तो मतलब लोकल कम्युनिटीज के साथ आप इस तरह से काम करते हैं, ये हमारे लिसनर्स को पता चला. और वैसे आनंद जी, पिछले कुछ सालों में एक बड़ा ट्रेंड चला आ रहा है कि लोग अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी यादगार मौके पर पौधे गिफ्ट करते हैं या फिर पेड़ लगाते हैं. इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और इसमें आम लोगों में कितनी अवेयरनेस बढ़ती है इससे?
0: जी, मुझे खुशी होता है ये देख के कि हर एक इंसान अपने जीवन का कोई एक महत्वपूर्ण दिन एक पेड़ लगा के सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा नया नहीं है, हम लोग ने ऐसे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है राजरहाट में, जहाँ पे हम लोगों ने किसी के डेथ एनिवर्सरी पे प्लांट किए हैं, किसी के बर्थ एनिवर्सरी पे प्लांट किए हैं. हम लोग ने इवन पुलवामा अटैक के टाइम में फॉर आर जवान्स हम लोगों ने प्लांट किए हैं. देखिए, बड़ी बात ये नहीं है कि आप कोई एक महत्वपूर्ण दिन आपकी जिंदगी के आप एलोकेट कर रहे हैं प्लांट करने के लिए. ये सिर्फ एक दिन का प्रोसेस नहीं है. अगर मैं देखूं, आप एक दिन प्लांट किए, बट आप अगर 5 दिन बाद जाके वही सेम पेड़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं मिलेगा.
1: जी, मेरा सवाल अगला यही था कि अगर हम जोश जोश में प्लांटेशन तो कर देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, लेकिन उसको कैसे जी मतलब पौधे लगाने के बाद उसकी परवरिश कैसे करनी है, केयर कैसे करनी है, वो करना भूल जाते हैं.
0: जी जी जी,
1: तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: जी, इसलिए मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ और हम लोग के टीम के जो बिलीफ है, हम लोग प्लांट करते हैं, बट हम लोग का

0: 90% एफर्ट रहता है वो उस प्लांट को मेंटेन करने का और उसको एक मैच्योर ट्री का स्टेज तक उसको सक्सेसफुली पहुंचाने तक। देखिए हम लोग प्लांट्स को बहुत अलग तरीके से व्यू करते हैं जो कि बहुत गलत है। अगर हम लोग एक प्लांट को एक बच्चे के तरह देखें, अभी आप अगर एक 5 साल के बच्चे को अगर आप फील्ड में जाके छोड़ देंगे, अगर आप उसको केयर नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं देंगे, उसको पोषण नहीं देंगे, वो बच्चा कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता है।
1: जी।
0: अभी हम लोग के पेड़ पौधे के साथ भी इट इज द सेम थिंग। अभी हम लोग जब प्लांट करते हैं वी मस्ट मेक श्योर दैट जो प्लांट हम लोग प्लांट किए हैं उसको एटलीस्ट हम लोग 3 साल तक देखभाल करें, क्योंकि 3 साल में वो पेड़ मेच्योर ट्री बन जाएगा जहां पे वो खुद अपना टेक केयर कर सकते हैं, वो खुद अपना न्यूट्रिशन वाटर वो खुद सोर्स कर सकते। बट जब तक वो पेड़ वो स्टेज तक नहीं पहुंचता है, ये हम लोग का ड्यूटी और कर्तव्य है कि अगर हम लोग प्लांट कर रहे हैं हम लोग उसको मेंटेन भी करें और सक्सेसफुली उसको मेच्योर ट्री के स्टेज तक पहुंचाए।
1: थैंक यू सो मच। मतलब पेड़ लगाने के साथ उसे बचाना जो है वो भी असली जिम्मेदारी होती है, क्यों है ना। तो अब चलिए अरुण जी एक थोड़ा बड़े लेवल पर बात करते हैं, जहां आज ग्लोबल स्टेज पर सबसे बड़ा और ट्रेंडिंग एक टर्म सुनती हूँ कार्बन प्रोजेक्ट्स का। आप हाई इंटीग्रिटी कार्बन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। एक आम इंसान जब कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केट सुनता है तो उसे समझ नहीं आता। आप हमें बताएं कि ये कार्बन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और ये एनवायरमेंट को बचाने के साथ साथ कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉडीज के लिए कैसे बड़ा एसेट बन सकता है।
0: जी देखिए, बहुत साधारण भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा।
1: जी
0: ये कार्बन और कार्बन मार्केट्स का जो जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपके क्योटो प्रोटोकॉल में एंड जो आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ विद द पेरिस अग्रीमेंट जो कि मोस्ट ऑफ आवर नेशंस हैव साइंड ऑन। अभी जो लार्ज स्केल मार्केट जो कि इमिशन मार्केट है द जीएचजी इमिशन मार्केट जहां पे बहुत सारे इमिशंस हो रहे ऑन लार्ज स्केल, इसको कर्टेल और इसको रिड्यूस करने के लिए ये कार्बन मार्केट और ये कार्बन क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अभी ये मेथोडोलॉजी और ये मार्केट इंडिया में अभी बहुत नया है। इंडिया में हमारे गवर्नमेंट सीसीटीएस पे काम कर रहे हैं जहां पे इंडिया का खुद एक कार्बन मार्केट इकोसिस्टम रहेगा, बट बाहर देशों में इंटरनेशनली ये सब लास्ट 15 से 20 साल से चलते हुए आ रहा है। अभी कार्बन मार्केट क्या है, मैं सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे आपका एनएससी बीएससी स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट्स है जहां पे आपका बड़े बड़े कंपनीज के स्टॉक ट्रेड होते हैं, वैसे ही कार्बन मार्केट में कार्बन बेस्ड कंपनीज जो लोग प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, जो लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, वो लोग के जो कार्बन स्टॉक है जो द सर्टिफाइड कार्बन क्रेडिट्स दैट आर बीइंग जेनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स, वो सब कार्बन वो लोग मार्केट प्लेस में बेच सकते हैं। अच्छा। अभी कार्बन मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक कंप्लायंस मार्केट है और एक वॉलेंटरी मार्केट है। कंप्लायंस मार्केट पे जो भी कंपनीज है उन लोग को एक एमिशन कंप्लायंस का रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है, जहां पे अगर वो लोग एक्सीड किए उन लोग को कार्बन क्रेडिट जो कि अलाउंस है वो दूसरे कंपनी से खरीदना पड़ता है।
1: जी
0: बट वॉलेंटरी मार्केट में जो होता है वहां पे इंडिविजुअल डेवलपर्स आके कार्बन मार्केट आके कार्बन प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं और फिर उसी प्रोजेक्ट से जो क्रेडिट्स जेनरेट होते हैं उसको वो लोग वॉलेंटरी कार्बन मार्केट में सेल करते हैं। अभी आप पूछेंगे कि अच्छा सेल अगर कर रहे हैं आप किसको सेल कर रहे हैं, अगर आप पहले सुने होंगे एक नेट जीरो टारगेट है, सारे देशों का नेट जीरो टारगेट है, हमारे नेट जीरो इंडिया का नेट जीरो टारगेट शायद 2050 का है।
1: okay.
0: बट दूसरे देशों का नेट जीरो टारगेट करीब 2030-2035 तक है।
1: यानी कि एनवायरमेंट को बचाना अब सिर्फ एक सामाजिक सेवा नहीं रह गया है बल्कि एक फाइनेंशियल सिस्टम भी बन चुका है। अरुण जी, राष्ट्रीय वन महोत्सव पर आप हमारे तमाम लिसनर्स को, चाहे वो घर बैठे हो, युवा हो या कोई किसान हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी।

0: मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये साल के हमारे राष्ट्रीय वन महोत्सव के थीम हमारे प्रधानमंत्री रखे हैं, एक पेड़ माँ के नाम। अभी मैं हमारे लिसनर्स को जो मैं बताना चाहता हूँ कि पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा बात है। मैं चाहता हूँ कि और इंसान और युवा आए, पेड़ पौधा लगाए, बट वो सिर्फ पेड़ पौधा तक ही सीमित नहीं है। अभी हम लोग जो क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उसमें पेड़ लगाना और सिर्फ पेड़ को मेंटेन करना ही काफी नहीं है। हम लोग को अपना लाइफस्टाइल्स, हमारे जो लाइफस्टाइल्स है, हमारे जे हमारे हमारा जो अप्रोच टू लाइफ, द वे ऑफ लिविंग, इन सब को बहुत बहुत डिफरेंट वे से व्यू करना पड़ेगा, और इसको अभी ये क्लाइमेट क्राइसिस पे इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। मैं जो अपने जो युवा है जो हम लोग को सुन रहे हैं, मैं उन लोग को गुजारिश करूंगा कि वो लोग और ज्यादा ग्रीन फ्रेंडली एक्टिविटीज करें, और ज्यादा नेचर और इन्वायरमेंट में वो लोग अपना टाइम स्पेंड करें, वो लोग कम पानी का मिसयूज करें, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बचाते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये एक 365 डे प्रोसेस है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन आके आप कोई रिवर क्लीन अप कर दे, रोड क्लीन अप कर दे, या पेड़ लगा दे कहीं पे, उससे आपने अपना पार्ट कर दिया है फॉर मदर नेचर, वो एकदम गलत है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, ये हमारे डेली जो लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो हम लोग को अपना डेली लाइफस्टाइल, अपना थॉट प्रोसेस को बहुत चेंज करना पड़ेगा अगर ये क्लाइमेट क्राइसिस को हम लोग को ओवरकम करना है। सो इसमें युवा सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर जेनरेशन ही है जो ये सब फेस करेंगे, और ज्यादा क्लाइमेट चेंज और गर्मी, बारिश। आपने देखा ही होगा लास्ट ईयर सितंबर में जैसा बारिश हुआ, कोलकाता में पूरा पानी भर गया। ये सब बहुत अनसीजनल है, जो कि क्लाइमेट क्या वजह से है। तो मैं युवा को यही सजेस्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और थोड़ा नेचर में जाए, आप नेचर में जाके आप टाइम स्पेंड करें, आप नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, और फिर आप सोचिए आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आगे बोला, आप कम पानी इस्तेमाल कीजिए, आप वाटर वेस्टेज को सीरियसली लीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज को सीरियसली लीजिए, आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा यूज कीजिए, अगर आपको कहीं जाना है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंस्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जहां पे बहुत इमिशन होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि एक एक घर में तीन चार गाड़ी है, अभी एक एक इंसान एक एक गाड़ी लेके जाते, तो आप देख सकते कितना इमिशन बढ़ गया। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य से, छोटे छोटे इनिशिएटिव से, हम लोग के तरह आम नागरिक भी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का ये जो क्राइसिस है, उस पे भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना पार्ट कर सकते हैं फॉर मदर नेचर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन जी, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो आकर हमें सिखाया कि पेड़ लगाना सिर्फ एक गतिविधि नहीं बल्कि एक बेहतरीन साइंस और सुनहरा भविष्य भी है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बातें सुनकर हमारे लिसनर्स जो हमारे श्रोता जो है आज एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज के खास गेस्ट आर्यन एरिथन जी। उनकी बातों पर गौर कीजिएगा, एक पौधा जरूर लगाइएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वार्ता वन महोत्सव पर। हमारे अतिथि थे आर्यन जी एरिथन, और इनसे बातचीत कर रही थी पापिया भट्टाचार्य जी।

और अब चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए। फिल्म है कब तक चुप रहूंगी, गायक कलाकार मोहम्मद अजीज और साथी, गीत लिखा है समीर ने और संगीत बप्पी लहरी का है। और फिलहाल इस गीत को सुनते रहिए और आपके दोस्त रोशन मुरारका को यहीं आगे दीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: লানা রঙের গান আজ এই পর্যন্তই। আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা। পরবর্তী অনুষ্ঠান দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित।

0: कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से

0: इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश

सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में

0: अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his 3-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake 3-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shundipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती पर

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत

0: धन्यवाद आपका।
1: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2331-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है जी, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
1: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
1: जी।
0: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं
1: जी,
0: जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
1: जी।
0: और ऐसा है, इसका एक थम रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
1: ठीक है,
0: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
1: जी,
0: रिटर्न कॉल नहीं
1: होती, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ
1: जी, बिल्कुल।
0: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
0: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, करते हैं
1: जी।
0: तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है

0: उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है। वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है। तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है। कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है तो, उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए। अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी। रवि,
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है, वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त करो, इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफी मटेरियल है, उस पर काफी इंफॉर्मेशन है, काफी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है
1: जी।
3: जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 और इवन 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह की जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश,
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
4: जी। नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे केस में, उसके लिए हम कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये, मैं एक सुझाव भी था, जितने भी सरकारी विद्यालय है

0: या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
1: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन्स है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे उनको, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
2: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
3: सभी को नमस्कार
2: जी,
3: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल की 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी।
4: पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
2: एक बार फिर से सवाल करेंगे
4: आप
2: कट गया शायद उन्होंने उनका
4: डिस्कनेक्ट
2: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ
4: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डाइवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
2: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय

0: और चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
1: जी? नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार
1: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
1: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
2: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
0: जी,
2: स्टूडेंट्स
1: जी, विद्यार्थी
2: जी सर। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से और कई लाख बच्चे से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के पर MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के IIMs के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेकर सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
0: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
2: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है जिसके माध्यम से आप ईजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलो अप करता है और उनको सपोर्ट देता है ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
0: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
4: धन्यवाद। मैं धर्मवीर ब्राह्मण का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
0: जी, बताइए।
4: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में दसवीं क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत ना बनाएं, तो आपको उसको छूना नहीं है या जो भी जैसे भी तरीके से समझ बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए। क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार

0: चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
1: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से की फीचर फोन से किया उसका इफेक्ट सेम है। जहाँ तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं साइबर अटैक साइबर इंसिडेंट्स होते हैं वो फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं आपका ओटीपी आता है आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पस के लिए काफी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
2: गुलशन जी एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
1: देखिए एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
2: जी,
1: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो इतनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
2: जी।
1: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है आपने पूछा नहीं है उस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
2: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
3: देखिए ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं आप ये कर रहे हैं और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
2: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक ये लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा इसका, जो
2: साइबर फ्रॉड
4: 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है इसका मुझे उत्तर

0: जी जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
2: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
2: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये, जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है, और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

0: भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। मंदिर के पत्थर की नकाशी में रामायण के दृश्य चित्रित हैं। ये दर्शाते हैं कि कैसे भारतीय महाकाव्य समुद्र पार करके जावा की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए। आज भी इंडोनेशिया के प्रसिद्ध रामायण बैले के माध्यम से ये महाकाव्य जीवित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। इस बीच विदेश मंत्री ने कोमोरोस संघ के विदेश मंत्री मबाय मोहम्मद तथा वहां की सरकार और लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर श्री जयशंकर ने दोनों देशों के बीच विजन महासागर से संबंधित समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री ने मलावी के विदेश मंत्री जॉर्ज टी चाम्पोडा और वहां की जनता को भी उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां के लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। क्षेत्र में पिछले एक महीने से प्रदर्शन जारी है। एक अधिकारी के अनुसार लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। खबरों के अनुसार पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। इसके कारण लोगों को भोजन और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालात बिगड़ने के कारण कई लोग नियंत्रण रेखा पार कर भारत आने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने भारत सरकार से नियंत्रण रेखा खोलने की अपील की है। ये अपील ऐसे समय में की गई है जब खबरों में दावा किया गया है कि प्रदर्शन नहीं रुकने पर पाकिस्तान की सेना ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। वाहन को एक इमाम की दरगाह की जालीदार बनावट की तरह सजाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: अंतिम यात्रा की व्यवस्था संभाल रहे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल हसन जादेह ने बताया कि पार्थिव शरीरों को लगभग 12 घंटों तक तेहरान की सड़कों से ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचाया जाएगा। शोक की अवधि के दौरान प्रशासन ने राजधानी की कई प्रमुख सड़कों को बंद किया है। देश का हवाई क्षेत्र भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सामान्य जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा है। यह शोक शनिवार से शुरू हुआ और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। इसके बाद आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच ईरान संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत भी जारी रखे हुए है। खबरों के अनुसार अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ वर्ष 2020 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ से कहीं अधिक दिखाई

0: की। उस समय 10 लाख से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
1: इंसानों और जानवरों के बीच फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जा रहा है। ये बीमारियां जन स्वास्थ्य, जानवरों की सेहत और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वन हेल्थ अप्रोच भारत की जन स्वास्थ्य रणनीति का अहम स्तंभ बन गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से 18 लोग मारे गए हैं जबकि 60 घायल हुए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए। इन हमलों से पोडिलस्की जिले में एक आवासीय इमारत ढह गई। डारनित्सिया जिले में कई बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इन इमारतों के मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये हमले तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुए हैं जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की आशा है। इंडोनेशिया में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अधिक से अधिक लोग स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक कल्याण के लिए इस प्राचीन भारतीय पद्धति को अपना रहे हैं। जकार्ता, बाली और कई अन्य शहरों के पार्क, स्कूल, फिटनेस सेंटर और सामुदायिक स्थलों में नियमित योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इस देश के नागरिक भारतीय शैली की फिटनेस पद्धति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। वहीं सुबह 5:30 बजे अमेरिका की भिड़ंत बेल्जियम से होगी। इससे पहले इंग्लैंड और नॉर्वे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में मैक्सिको को 3-2 से हराया जबकि नॉर्वे ने उलटफेर करते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस्लामाबाद द्वारा आवश्यक आपूर्ति की नाकाबंदी से क्षेत्र में उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने के लिए भारत से सहायता की अपील की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आरएस रघु विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives at Jakarta in Indonesia, beginning high-stakes three-nation Indo-Pacific tour. People of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir appeal to India for aid as blockade of essential supplies by Islamabad sparks humanitarian crisis in the region. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. In Ukraine, 18 people killed in Russian strikes on capital Kiev. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Co-host USA to face Belgium in Seattle tomorrow morning. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं।

0: किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं।